0: 달려 달려 무서워.
1: 엄마 엄마 철철철
0: 락바 헬리 페리 बच्चा देखिन कुकुर बिराल जस्तो झगडा
2: परेछ
0: सौदा लगेर भित्रिन अन्त तो चाहिँ के भएको
1: ओइ इसाको त मसँग
3: अम्बो
2: के
1: अन्त भोलि ड्राइभ पिकनिक आउदिनस
2: आउदिन
1: जम्न
2: आउदिन आफै जा
1: साच्चै के आउदिनस